इंसान की एक बड़ी विशेषता है उसके विचार करने की क्षमता, जो दूसरे परजीवियों में नहीं पाई जाती है। जानवर भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं और एक उद्देश्यहीन जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इंसान जीवन की ऊंचाइयों को छूकर अपनी जाति और मानवता की सेवा करते हुए श्रेष्ठ जीवन जीता है। विचार करने की जो अनोखी क्षमता मानव को मिली है, इसका सही ढंग से उपयोग कीजिए। ऊंची सोच रखिए, आगे बढ़िए। यदि आप कुतुब मीनार के पहले माले से चारों ओर देखते हैं, तो आपको कूड़ा करकट यानी अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर के माले से चारों ओर देखते हैं, तो सुंदर सुंदर इमारतें दिखाई देती हैं। खराब चीजें आपकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। इसी प्रकार हमें अपने विचार और आचरण को हर रोज ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि हमारा नजरिया उत्तम और व्यवहारिक बनता जाए और हम अच्छे जीवन के लिए उदार और सहनशील बन सके। अच्छा सोचेंगे तभी फल अच्छा होगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो के अगर

क्योंकि सर इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसके साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आज साथी दंपाकलोंग आकाशवाणी के अरुण एफएम से हार्दिक स्वागत करती हूं। सन 2026 जुलाई महीने के आज 25 तारीख है और दिन है शनिवार। दोस्तों आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीर्थांगजाम तथा तकनीकी अभियंता थाना आतुम। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे देर और ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की आरम्भ करते हैं। दोस्तों आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज से कुछ पलों में 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 6:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज, 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत, 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार, 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे और 7:10 पर आप सुनेंगे अपतानी श्रोताओं का समाचार। सात पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट और 7:35 पर थागिन श्रोताओं का समाचार, 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार और 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात, 8:15 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर शिलोंग केंद्र से प्रसारित नोटिस न्यूज, 8:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर और 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 9:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज और 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दस बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज और 10:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। दस पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 11:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। तो दोस्तों ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। जी हाँ, आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज और 6:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। दोस्तों से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा

0: रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्त अभी आप सुन रहे थे जोमिया शराम और उनके साथी द्वारा गालो भाषा में दोनी पोलो भक्ति गीत। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर तेनलो पोल के चामनीगोला लोंगो तारीख तेरी आरोसो को सिर का गालो मिंके नागो में मेलेंजीरे मिंके नागो मेंजीने गो मार्बम जिर्दो नीत पेपर लीक सोक अबालगा ब इने ने पोल पुनीगोला बाटक आरासो गो नगीने बदू बदाम रूग काग दूना अमला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु मरुम वीडियो मैसेज लो मेंकेन जी दूला सोक पेपर एम दोचो कासिला पुगने गद्दम पतक सेला अतुकुन में एम जितू स्टूडेंट्स गद्दे एकेडेमिक सेशन एम रिपेन मेन पेन माधव एम ला सरकार माजिब दिंची कोची गदूना एम लब मेंकेन जी तातु पेपर लीक सिगी अमुम्ब अला अचा से आगोम गोमो सिगी स्टूडेंट्स ओक बुनुक अनाब गद लगाब माजिब आपु काची ग नाम आगोम गोब रिदाक एम ला मोदी ब मेन तातु ओक सोक लगाब कंसर्न डिपार्टमेंट एम पास ट्रैक कोर्ट गो मोलेन गतोका एम ला जिलेन नाम एम डिपार्टमेंट सिम अगेर एम दिंची रिगगर ला ड्राफ्ट एम मरुम आयोब बुक लो जिलुक पाकु एम ला बु मेंकेन जी तातु ओक सोक अबाम केबिनेट एम अलरूप पारजु सिर एम तातु ओक पार्लियामेंट ग दुदुम दूनाम गे होप्ता अनिना ने दूदाक सोगो जिम बिल सिम मोलेन गे दोबे रिगला पे एम ला बु दिंची जाब मेंकेन जी तातु रिवाज गे गवर्निंग काउंसिल एम चेयरमैन डॉक्टर जोराम बेगी बु इंगसिला इंदुला बुनु गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केती परनायक रिटायर्ड ने मरो ईटानगर के लोक भवन लो कारक सिदूला यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज रिवाच

0: सत्संगी,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गालो श्वेता का समाचार। गालो श्वेता का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सुबह सवेरे।

हर नई सुबह एक नई उम्मीद और नया मौका लेकर आती है। कल की बातों को छोड़ कर आज अपने सपनों की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। दोस्तों याद रखिए, पॉजिटिव सोच और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपका दिन खुशी और सफलता और पॉजिटिविटी से भरा रहे, इसी शुभ विचार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों के साथ और हम बातें करेंगे हेल्थ से जुड़ी कुछ खास बातें। जी हाँ, कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं सबसे पहले हिंदी फिल्मी गीत, और गीतों में आपके लिए हमने आपके लिए पेश कर रहे हैं दिल का क्या कसूर फिल्म से। गीत के बोल हैं आशिकी में हर आशिक, और इस गीत को आवाज दी है साधना सरगम ने।

दोनों सौ इस गीत के बाद अब चले कार्यक्रम में हम नजर रखते हैं ग्लोई स्किन रखने की मॉर्निंग रिचुअल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो ये सिंपल मॉर्निंग रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठते ही एक दो ग्लास पानी पिए, इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और स्किन फ्रेश दिखती है, और साथ ही जेंटल फेस क्लींजर फेस वॉश करें। दोस्तों स्किन को क्लीन करें बिना ओवर ड्राई किए, और विटामिन सी सीरम लगाइए, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप वही सीरम लगा सकते हैं जो आपके स्किन को सूट करते हैं। जी हाँ, और विटामिन से हमारे स्किन को ब्राइट और इवन टोन बनाने में मदद करता है, और साथ ही विटामिन के बाद आप जो सीरम लगाते हैं उसके बाद आप लाइट मॉइस्चराइजर लगाइए, इससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सनस्क्रीन एसपीएफ 30 या उससे ऊपर जरूर लगाए, घर से बाहर निकले या नहीं, लेकिन यूवी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों। और साथ ही हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, फ्रूट्स नट्स एग्स या प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और साथ ही 10 से 15 मिनट्स मॉर्निंग वॉक या लाइट एक्सरसाइज करें, इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जिससे नेचुरल ग्लो आता है। और अपनी स्ट्रेस कम करें, 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन भी स्किन पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। दोस्तों बोनस टिप्स यही रहेंगे कि 7 से 8 घंटे की नींद लें, दिन भर 2 से 3 लीटर पानी पिए जरूरत और मौसम के हिसाब से, और ज्यादा शुगरी और ऑयली फूड्स को लिमिट करें, फेस को

बार बार हाथ से टच ना करें। जी हाँ, और दोस्तों अगर आप ये मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन जरूर ग्लोई रहेंगे। अब चलिए कार्यक्रम में और आगे चलते हुए आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत हमारी अधूरी कहानी फिल्म से। जी हाँ, गीत के बोल है हम नवा और इस गीत को आवाज दी है मिथुन पापोन और साईद ख्वात्री ने।

दोस्त, अभी आप सुन रहे थे आपदानी श्रोताओं का समाचार। आपदानी श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1।

दोस्तों प्रस्तुति आपके लिए कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट और इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे समाचार और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले समाचारों की ओर नजर रखते हैं। दोस्तों अरुणाचल टाइम्स की मुख्य खबर है बोमजिला कनेक्ट महोत्सव की शुरुआत। जी हाँ, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म कल्चर और लोकल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए इस कल्चरल प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। गृह मंत्रालय MHA ने कहा कि देश भर की मॉनसून स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और सहायता दी जा सके। देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ने स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए नेसो प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया और आदिबाने केबांग यूथ विंग ABK YW ने ईस्ट सियांग एरिया में खराब सड़कों और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को जल्दी ठीक करने की मांग की, साथ ही फ्लड अफेक्टेड लोगों को 4 लाख से अधिक की सहायता दी। दोस्तों तवांग डिप्यूटी कमिश्नर ने सभी डिपार्टमेंट हेड्स को गवर्नमेंट स्कीम्स के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंट रहने का निर्देश दिया और अनएम्प्लॉयड मेडिकल लीव टेक्नोलॉजीज ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट की मांग को लेकर 27 जुलाई को पीसफुल प्रोटेस्ट करने की घोषणा की है। गवर्नर KT परनाइक ने कहा कि रिवॉल्ड फ्यूचर में एंशियन ट्रेडिशंस और कल्चर पर ग्लोबल रिसर्च सेंटर बना सकता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स का जापान के हिरोशिमा ओरिचुरू फेलोशिप समर कोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों ये थे अरुणाचल टाइम्स के कुछ समाचार और अब कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म दिल का रिश्ता और गीत के बोल है दिल चुराले और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

दोस्त आप सुन रहे थे ये गीत दिल का रिश्ता फिल्म से। जी हाँ, और कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं और एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार। और गीत के बोल है भूरे भूरे बादल, और इस गीत को आवाज दी है कुणाल गंजावाला और श्रेया घोषाली।

0: agriculture o ka horticulture ngō nā pō ngā la PMAY Chief Minister Health Insurance Scheme Healthcare Services Adara Enrollment Garigora Road Connection ngā la Forest Conservation Sam Alarongba Rilingeta Kela Vipalinduko Indian Army ngā Soria Samblan Anam Guni Kelo ga Thursday Alolo Upper Siang District ga Tuting Molo Rigegen Kubela Bifaduku So ga Program Araloka Adu Au Lo Dongne Veterans de Dangala Army Welfare Schemes Pension Related benefits of healthcare facilities nga alabajilik doku basake na program nga marablen doku nela bifalin doku tawang nga deputy commissioner namgyal angmo mayo lom na naba tar district level monitoring committee meeting dongpam ngunye DC conference hall lo dongpam kaya ganyo kubala bifaduku Di sini mi field officers dadanga ato ayunaga station lo ala bidong tala kam ngariga sengge takela heads of the department dadanga mi pagan kuba dara natong government college itanagar nga mayo MOU go Neso Fugines Private Limited nga tulik mi sugan kuba la mi faduko so dara natong government college nga la Neso Fugines nga agreement ga aralok ke agreement nga nga dibam sengbam dokubela sekena MOU nga tuluk mis pakunela mifalin doku Arunachal Women's League 2026 football match nga Golden Jubilee Outdoor Stadium UPR lo likshuku lo kilo ga Thursday alolo Monuel FC nga yaya chogunyu kubela yaya chogi kula first prize nga paganyu kubela mpaduku so Kurumkume District Football Association nga second lo ala runner up nga paganyu kubela mpaduku Some All India Football Federation ke Tajirar Bala Arunachal Pradesh Football Association ke President Bakarine Kipa Ajay ni mi so ke Award Ceremony so Dongbam Gany Kubala me falinduku Saru ke Tagen Gamba Union Bintam Sangka Hebo
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे थागिन श्रेताओं का समाचार थागिन श्रेताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात दोस्तों और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सदाबहार इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन सदाबहार गीतों के साथ और मौसम के अपडेट्स के साथ तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले मौसम की अपडेट्स की ओर नजर रखते हैं दोस्तों आज मौसम यानी ईटानगर में मौसम गर्म और नमी वाला रहने की संभावना है बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछार हो सकती है दिन में टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास और रात में करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है बाहर निकलते समय छतरी रखना बेहतर रहेगा क्योंकि मानसून के कारण बारिश की संभावना भी बनी हुई है और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के दौरान सड़क पर यात्रा करते समय सतर्क रहें दोस्तों और अरुणाचल प्रदेश के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हम अपडेट्स देखें तो मानसून के कारण

ज्यादातर इलाकों में बादल, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर गरज चमक की संभावना है। तवांग बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना। टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे और वेस्ट कामेंग में बादल और कभी कभी बारिश या थंडरस्टॉर्म की संभावना है। एशियांग पार्टली क्लाउडी रहेंगे और साथ में गर्म भी रहेंगे और एक दो बार बारिश या थंडरस्टॉर्म हो सकता है। टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे और लोअर सुबनसिरी ज्यादा बादल, बारिश की संभावना। मौसम ठंडा और नमी वाला रहेगा। चांगलांग, तिरप, लोंगडिंग मानसून के कारण बादल और बारिश के चांसेस ज्यादा है और यात्रा में सावधानी रखें। दोस्तों, नमसाई, लोहित, अंजाव में गर्म मौसम के साथ बादल और स्थानीय बारिश की संभावना है। यात्रा के लिए सलाह है, छतरी, रेनकोट अपने साथ रखें और पहाड़ी सड़कों पर लैंडस्लाइड या स्लिपरी रोड का ध्यान रखें, खासकर तेज बारिश के समय। तो अब चलिए कार्यक्रम सदाबहार में हम आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं रेट्रो कलेक्शंस फ्रॉम द फिल्म कुर्बानी और गीत के बोल हैं आप जैसा खोई और इसकी को आवाज दी है नजीर हसन ने।

200 इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म की टाइटल ट्रैक और इस टाइटल ट्रैक का आवाज दी है लता मंगेशकर ने। दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक हिंदी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसे राज खोसला ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में मुख्य कलाकार नूतन आशा पारेख विनोद खन्ना और विजय आनंद है। दोस्तों कहानी एक ऐसी महिला संयुक्ता के त्याग और ममता पर आधारित है जो अपने पति के दूसरे रिश्ते से हुए बेटे को भी अपने बेटे की तरह पालती है। फिल्म में परिवार माँ का प्यार त्याग सम्मान और रिश्तों की गहराई को दिखाया गया है। इस फिल्म के लिए नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का था और इसके गीत आज भी याद किए जाते हैं। यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी और अपने समय की सफल फिल्मों में शामिल है। दोस्तों इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत नूतन जी का शानदार अभिनय और माँ के निष्काम प्रेम का भावुक चित्रण है। तो पेश कर रहे हैं आपके लिए मैं तुलसी तेरे आंगन के फिल्म की टाइटल ट्रैक।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम सदाबहार में आपके लिए पेश कर रहे हैं और एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म कभी कभी। और गीत के बोल है, मैं पल दो पल की शायर हूँ, और इस गीत को आवाज दी है मुकेश ने।
1: कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार और शिलांग केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: किसान ज्ञान की बात था, हर किसी के लबों में
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई

0: महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
4: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यता तीन डिमांड थी और पांच विचार हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
5: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप

0: डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रीशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी उमोशी पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें करगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास

0: हाथ रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र और शिलोंग केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपके आरजे साथी दांपक। अब चलिए आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, और इस सेगमेंट पर आप मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास इन्फॉर्मेशन और बेहतरीन हिंदी फिल्में गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर रखते हैं आज के दिन भारत के इतिहास में क्या खास हुआ और ये दिन क्यों खास है। दोस्तों आज ही के दिन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ। आज ही के दिन 2007 को प्रतिभा पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण पल था और राष्ट्रपतियों का खास दिन है आज। आज ही के दिन को कई राष्ट्रपतियों ने अपना पद संभाला है, इसलिए ये तारीख राष्ट्रपति भवन और भारत के संवैधानिक इतिहास में एक खास जगह रखती है। जैसे आर वेंकटा रमन 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति बने और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आज के दिन 1992 को शपथ ली और रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने। और दोस्तों आज ही के दिन 1978 में दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन जन्मा था, जो मेडिकल साइंस में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए आज के दिन को याद किया जाता है क्योंकि ये दिन भारत के लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय नेतृत्व के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए फिल्मी गीत तो, और उसके तुरंत बाद हम फिर बातें करेंगे कुछ खास इन्फॉर्मेशन से जुड़ी। तो चलिए कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे गीत तुम मिले फिल्म से और गीत के बोल हैं दिल इबादत और इस गीत को गाया है के ने।

बस तो इस गीत के बाद अब चलिए कार्यक्रम में हम कुछ खास बातें करते हैं फेलियर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में फेलियर आती है, लेकिन उस फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए और उस फेलियर से हमें अपने सपनों को रुकने देना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फेलियर को एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ने के कुछ तरीके हैं। जैसे फेलियर को एक सीख समझे, अपनी पहचान नहीं। हार का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, फेलियर से बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं किया और कहां सुधार की जरूरत है। दोस्तों अपने फीलिंग्स और को समय दे, दुख गुस्सा या निराशा महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हीं भावनाओं में रुक जाने के बजाय धीरे धीरे खुद को संभालिए। खुद से अच्छे शब्द बोलिए, मैं हार गया की जगह आप खुद से बोलिए कि मुझे एक नई सीख मिली है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। और अपनी गलतियों का एनालिस करें, सोचिए क्या गलत हुआ, मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। और छोटे छोटे गोल्स बनाएं, बड़े सपनों को छोटे स्टेप्स में बांध दीजिए और हर छोटी प्रोग्रेस कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें दोस्तों, हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी की सक्सेस का समय आपके समय को डिफाइन नहीं करता। डिसिप्लिन और पेशेंस रखें। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद भी उठकर चलना जानते हैं। याद रखिए, फेलियर जिंदगी का अर्थ नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का सिग्नल होता है। जो इंसान सीखकर आगे बढ़ता है, वही असली में जीतता है। आज की एक छोटी सी शुरुआत भी कल की बड़ी सफलता बन सकती है। जी हाँ, और आशा है आप अपने फेलियर को अपने से दूर रखेंगे और आप उस पर काम करेंगे। तो अब चलिए कार्यक्रम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक और बेहतरीन गीत। दोस्तों अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत फ्रॉम द फिल्म नौटंकी साला, और गीत के बोल है मेरा मन, और इस गीत को गाया है आयुष्मान खुराना ने।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून को लाने को लेकर जारी किए गए अपने संदेश पर लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वीडियो को 24 घंटे में 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया है। इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 30 करोड़ व्यूज का था।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट परीक्षा पेपर लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में पांचवें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों में कार्यवाही सोमवार तक स्थगित है। दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की विजय की याद में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस

ये भव्य समारोह की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 दिवसीय स्मारक कार्यक्रम आज से शुरू होंगे, जिसमें 1999 के करगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप।

दोस्तों कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर हम बातें करेंगे फिल्मी दुनिया से जुड़ी गॉसिप्स और रिलेशनशिप्स की, गॉसिप्स और फिल्मी अपडेट्स के साथ। तो चलिए नजर रखते हैं दोस्तों आज की बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स और फिल्म अपडेट्स ट्रेंड कर रहे हैं। आहन पांडे सरवरी की नई फिल्म की चर्चा। जी हाँ, डायरेक्टर अली अब्बास जाफर एक नए रोमांटिक एक्शन ड्रामा के लिए यशराज फिल्म्स के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में आहन पांडे, सरवरी, बॉबी डेल और ऐश्वरी ताकरे नजर आएंगे। रिलीज मार्च 2027 के लिए प्लान की गई है। दोस्तों आलिया भट्ट की अल्फा चर्चा में। आलिया भट्ट और सरवरी की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है। फिल्म में एक्शन और स्पाई यूनिवर्स का तड़का देखने को मिलेगा। और सनी देओल की पीरियड ड्रामा फिल्म बटवारा 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है। फिल्म पार्टीशन के समय की कहानी पर आधारित है। और नई फिल्म जो अभी रिलीज हुई या होने वाली है जन नेता। दोस्तों एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, इसमें मुख्य भूमिका है विजय भोजाहेज, बॉबी डेल जैसे कलाकार और दुल्हनिया ले आएंगे कॉमेडी ड्रामा, मैक्स मीन मिथ्या शाह की कॉमेडी रोमांस फिल्म और 12-13 स्टार है और साइट हीरोज भी जुलाई के आखिर में रिलीज शेड्यूल्ड में है। और इंडस्ट्री गॉसिप्स में देखे तो रणवीर सिंह और डॉन ट्री को लेकर इंडस्ट्री में काफी चर्चा रही है, जिसमें प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर रिपोर्ट्स आई है। सेलिब्रिटीज के नए प्रोजेक्ट्स कास्टिंग और रिलीज डेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बच बना हुआ है। आने वाले समय में बॉलीवुड फिल्म में एक्शन, स्पाई थ्रिलर और पीरियड ड्रामा फिल्म्स का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब

लिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने। दोस्तों, फिल्मी गानों में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत आर राजकुमार फिल्म से। गीत के बोल है गंदी बात और इस गीत को आवाज दी है मीका सिंह, प्रीतम और कल्पना ने।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत अंतरा मित्रा और नगा सजीव की आवाज में फिल्म आर राजकुमार से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, और अब चलिए हम फिल्मों पर बातें करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े सितारों की लेटेस्ट चर्चा और फिल्म की अपडेट्स है। शाहरुख खान SRK की अपकमिंग एक्शन फिल्म किंग को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें सुहाना खान भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग के कुछ इंटरनेशनल शेड्यूल्स की खबरें सामने आई है। SRK का स्पाई यूनिवर्स भी चर्चा में है, खासकर अल्फा जैसे प्रोजेक्ट्स के कनेक्शन को लेकर। दोस्तों, सलमान खान के एक्शन प्रोजेक्ट्स को लेकर बच बना हुआ है। उनकी अपकमिंग फिल्म्स में बड़े एक्शन रोल्स की तैयारी की खबरें हैं। फैंस सलमान को एक बार फिर बड़े पर्दे पर स्ट्रॉन्ग एक्शन अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड हैं, और अक्षय कुमार की कॉमेडी और एक्शन फिल्म्स की लाइनअप को लेकर चर्चा में है। 2026 में उनकी कई फिल्म्स रिलीज शेड्यूल्ड में हैं। उनके फैंस को उनकी पुरानी कॉमेडी स्टाइल वाली फिल्मों से भी काफी उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की रामायणा को लेकर बहुत बड़ा बच है। फिल्म में उनका मिथोलॉजिकल रोल देखने के लिए दर्शक उत्सुक हैं, और रणबीर आलिया बच की पर्सनल और प्रोफेशनल अपडेट्स भी मीडिया में चर्चा का विषय रहती है। दोस्तों, आलिया बच की स्पाई थ्रिलर अल्पा को लेकर एक्साइटमेंट है। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की एक इम्पोर्टेंट फिल्म मानी जा रही है। बॉलीवुड में अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं एक्शन फिल्म्स, मिथोलॉजिकल सिनेमा।

मास स्पाई यूनिवर्स बड़े बजट की फ्रेंचाइज मूवीज। जी हाँ, और चलिए इसी के साथ ही आपको कार्यक्रम में और आगे ले चलते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए फिल्मी गाने। दोस्तों, फिल्मी गानों में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत आ देखे जरा फिल्म से। गीत के बोल है गजब और इस गीत को आवाज दी है प्रीतम और सुनिधि चौहान ने।

0: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
0: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। जी हाँ, और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत मैं हूं ना फिल्म से। गीत के बोल है गौरी और इस गीत को आवाज दी है अनु मलिक, के श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान ने।

0: विशाल शेखर और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म दोस्ताना से। आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी गपशप में और हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत दिल मांगे मोर फिल्म से। जी हाँ, और उस वक्त दोस्तों यह फिल्म काफी हिट हुई और इस फिल्म के गाने भी काफी मशहूर हुए। तो पेश कर रहे हैं दिल मांगे मोर फिल्म का गीत कुबकू, और इस गीत को गाया है जायस गांधी और शान ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत आहिर हिमेश रेशमिया और समीर अंजान के आवाज में फिल्म टॉम डिक एंड हैरी से। इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: श्री मोदी के वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के अलावा कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शांति सुझाव हुए।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट पेपर परीक्षा लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में पांचवें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारतीय जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु की खबर है। पोत पर तीन भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एफएम अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: दोस्तों, कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आ गया है वो सेगमेंट आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए लेते हैं पहली फरमाइश। और हमें पहली फरमाइश आई है कार्बी आंगलोंग असम से, जो कि हमारे रेगुलर लिसनर है आतुर क्रो सार्लोई क्रो संचिंती थेरोन अक्सर थेरोन जी से। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत हमको तुमसे प्यार है फिल्म से। गीत के बोल है तेरे इश्क में पागल हो गए। और आपको बता दूं कि इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में पहला गीत आप सभी के नाम।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में हमें रिक्वेस्ट आया है हमारे रेगुलर लिस्टनर टेंशन क्रोजी से, कार्बी आंगलोंग असम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत क्या दिल ने कहा फिल्म से। और आपको बता दूं कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया है इस फिल्म का टाइटल ट्रैक, और इस टाइटल ट्रैक का आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। टेंशन क्रोजी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर ये गीत।

0: 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और चलिए कार्यक्रम में फिर से नजर रखते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट की। और इस वक्त हमें रिक्वेस्ट आई है हिगी बागरा आलो अरुणाचल प्रदेश से, गुमे मई बागरा जी से। और गुमे जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है फिल्म याद रखेगी दुनिया का गीत। और गीत के बोल है तुझे रब ने बनाया। और आपको बता दो कि इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। गुमे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में हमें रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिस्टनर झुमकर बागरा जी से, हिगी बागरा आलो से। और झुमकर जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है गीत कुर्बान फिल्म से। गीत के बोल है तू जब जब मुझको पुकारे। और आपको बता दो कि इस गीत को आवाज दी है अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण ने। झुमका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में हमें रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिस्नर हर्षित गोस्वामी जी से, बोगाघाट आसाम से। और हर्षित जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत हमने वही लगाया दिल फिल्म पति पत्नी और वो से। और आपको बता दूं कि इस गीत को आवाज दी है बादशाह देव साधना और कुणाल वर्मा ने। हर्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर यह गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब चलिए और आगे बढ़ते हुए नजर रखते हैं सॉन्ग फरमाइश की ओर। इस वक्त हमें फरमाइश आई है हमारे रेगुलर लिसनर रोमेस पात्रो, रोनू पात्रो और लकी जी से, कोलाकार आसाम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत लूट मार फिल्म से। गीत के बोल है हंस टू हरदम और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। और ये गीत वो डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त बाइकन अमल विमल देवाशीष हितेंद्र और जोगेंद्र जी को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर आप सभी दोस्ती के नाम ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में रिक्वेस्ट आई हमें आरन खान, आरन कब ईटानगर रेनी अरुणाचल सेंकी पार्क से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बॉर्डर टू फिल्म का गीत। गीत के बोल है मोहब्बत हो गई, और इस गीत का आवाज दी है सोनू निगम, जावेद अख्तर, पलक मुच्छल और अनु मलिक ने। आरब जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर यह गीत।

जब से मोहब्बत हो। दोस्तों इस गीत के बाद कार्यक्रम में हमें रिक्वेस्ट आई है हमारे रेगुलर लिस्टर हितेंद्र दास जी से असम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है मोहरा फिल्म का गीत। गीत के बोल है टिप टिप बरसा पानी, और इस गीत का आवाज दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। हितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर और इसी के साथ ही समय हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और आगे के सफर में आप से जुड़ेंगे आरजे नानास जी। दोस्तों, हमारे इस पहली प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक थी थंगजंग तथा तकनीकी अभियंता थाना आतुम और अब मुझे यानी अपना आरजे साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।
2: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 इच्छा थी।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने उनके विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक आधुनिक, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कानूनी माहौल बनाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आयोग ने समावेशिता, आम सहमति और विविध कानूनी परंपराओं के सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता लगातार दिखाई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र पर हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of the NTA that has been in controversy over paper leaks. Prime Minister Narendra Modi thanked youngsters and everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
1: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए. Thanks to everybody. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहे.
3: That video also created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views, as of now surpassing earlier record of 300 million views. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरुण एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ में, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में टाइम समय हो चुका है 11:11, यानी अब शुरू होगा हमारा दूसरा प्रसारण सभा। इससे पहले सबसे पहले तो बिग शाउट आउट टू दापाक लोम्बी, जिन्होंने पहले ट्रांसमिशन यानी हमारी पहली प्रसारण सभा में आग लगा दी और माहौल को बना दिया सुपर एनर्जेटिक। तो थैंक यू सो मच दापाक। अब बारी है कुछ अगले कुछ घंटों के लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, अमेजिंग ट्रैक्स और ढेर सारी बातों की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा ऊपर करिए और मेरे साथ इस वाइब पैक सफर में मजा लीजिए। स्टे ट्यून, गाना हो रहा है शुरू। इससे पहले कि हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा को शुरू करें, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और इंजीनियर ऑन ड्यूटी में है टीम। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा ये दूसरा सभा कार्यक्रम फिल्मी लहर के साथ।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आप सबका मैं हूं होस्ट और दोस्त आरजे ननास। तो चलिए आइए देर ना करते हुए सुनते हैं अतीफ असलम और सुनिधि चौहान की आवाज में द सॉन्ग बे इंतहा, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से ड्यूटी बात।